0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Juste à temps pour votre déménagement. Marquez de grandes économies chez Brick. Économisez jusqu'à 1 200 $ sur les sofas, plus économisez les taxes. Économisez jusqu'à 15% sur les ensembles de chambres à coucher et de salles à manger, plus économisez les taxes. Économisez jusqu'à 50% sur les téléviseurs dont la boîte est ouverte, plus économisez les taxes. Économisez jusqu'à 40% sur les matelas sélectionnés et obtenez la livraison locale gratuite sur les achats de 499 $ ou plus. Détails et exclusions en magasin. Marquez de grandes économies chez Brick. Plus d'économies pour vous.
2: अच्छा अक्सर ऐसा होता है कि अभी तो कामयाबी की सीढ़ी के पहले कदम पर ही होते हैं, अभी तो नाम मात्र ही कुछ अचीव किया होता है कि that tiny little bit of success shoots up and goes to your head. और after effect क्या होता है कि इस बीच आपकी नजर, आपका focus अपने target से हट जाता है. But always remember कि हवा में ताश के घर नहीं बनते, रोने से बिगड़े मुकद्दर नहीं बनते. दुनिया जीतने का हौसला रखिए जनाब, क्योंकि सिर्फ एक छोटी सी जीत से सिकंदर नहीं बनते.

0: ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਚੁਟਕਲੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਚਟਪਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
1: ਸੁਣਦੇ ਯਾਰ ਰੋਜ ਰੇਡੀਓ ਤੇ
2: ਸੁਣੋ ਸਾਡੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਕਲਚਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਤੇ
3: किसी के लिए कामयाबी की अपनी अपनी डेफिनेशन है। खुलकर हंस पाना, बड़ों और इंटेलिजेंट लोगों की रिस्पेक्ट गेन कर पाना और बच्चों का प्यार जीत पाना, लोगों में अच्छाई ढूंढ पाना, दुनिया को अच्छा बनाने में कोई योगदान दे पाना, चाहे वो पेड़ लगाना हो, चैरिटी करना हो, ये जान पाना, महसूस कर पाना कि आपके आसपास के लोगों की जिंदगी बेहतर हो पाई क्योंकि आप उनके साथ थे, मेरे लिए ये है कामयाबी। फॉर मी दिस इज द लिटरल मीनिंग ऑफ द टर्म सक्सेस।

0: ਪੰਜਾਬੀ ਚੁਟਕਲੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਚਟਪਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
1: ਆਹੋ ਸੁਣਦੇ ਯਾਰ ਰੋਜ਼ ਰੇਡੀਓ ਤੇ
2: ਸੁਣੋ ਸਾਡੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਕਲਚਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਤੇ
3: ऐसा होता है जिंदगी में कि हम औरों के करीब जाने की कोशिश में खुद से दूर हो जाते हैं, खुद को पहचान ही नहीं पाते। पता नहीं वजह टाइम की शॉर्टेज है या फिर कोई इंक्लिनेशन, कोई चाहत ही नहीं है खुद को जानने की, खुद से मिलने की। पर यकीन माने, जब आप अपने खुद के दोस्त बन जाएंगे तो जिंदगी एक नया मोड़ ले लेगी। क्योंकि अगर जिंदगी के सफर में अकेलेपन से डरते हो, दोस्तों की चाहत में दर दर भटकते हो, अगर करोगे अपने आप से ही दोस्ती, न होगा फिर कोई डर जब हम सफर खुद जैसा उमदा हो।

not just going to be another face in the crowd. मुझे भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है. भीड़ में लाखों चेहरों में गुम एक आम सा चेहरा. और क्यों बनूं मैं एक आम सा चेहरा जबकि मैं और मेरा मन दोनों ये जानते हैं कि मैं खास हूँ, बेहद खास. पर सिर्फ ये पता होने से बात खत्म नहीं होती है, क्योंकि मुझे यकीन करना होगा खुद पर, अपने टैलेंट पर, अपनी खूबियों पर. तब जन्म होगा मेरा दोबारा से. I know I'm not going to live forever, that's why I'll make this life the way I want it.

0: ऑफ पंजाब दे चुटकले कहानियां ते साडियां चटपटियां गल्लां
1: आहो सुनदे यार रोज रेडियो ते
2: सुनो साडे YouTube चैनल कल्चर ऑफ पंजाब ते।

Fight till you drop. Never stop. Don't give up till you reach the top because you're the best. और अगर वाकई में वो बेस्ट वाला एटीट्यूड है आप में तो फिर कोई भी छोटे मोटे सेटबैक्स आपको हिला नहीं पाएंगे क्योंकि जो बेस्ट होते हैं ना वो इतनी जल्दी हार नहीं मानते क्योंकि जो बेस्ट होते हैं ना वो चाहे हजारों बार गिर जाएं वापस अपने पांव पर झट से खड़े हो जाते हैं क्योंकि गिर के हार के फिर से उठ खड़े होने का जज्बा इज नॉट अ मैटर ऑफ स्किल और टैलेंट इट्स अ मैटर ऑफ डिसीजन एंड गट्स एंड यू हैव टू डू इट बिकॉज़ यू आर द बेस्ट।

कल्चर ऑफ पंजाब आपका डेली एंटरटेनमेंट डोज। सैंडी ग्रीनबर्ग नाम का एक बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट था, पर पुअर फैमिली से था। कोलंबिया यूनिवर्सिटी पढ़ने को गया, बट अनफॉर्चुनेटली कोई आंख की डिजीज हो गई, जो टाइम पर डिटेक्ट ना होने की वजह से सैंडी की आइट साइट चली गई। पर पढ़ाई उसने तब भी जारी रखी। पता कैसे? उसके हॉस्टल का रूममेट रोज रात को उसे टेक्स्ट बुक्स पढ़कर सुनाया करता था। अच्छा, इस सिचुएशन में अब खुद को रखें, अब खुद को ऑनेस्टली आंसर करें कि अगर आपके रूममेट पर कोई ऐसी मुसीबत आती, क्या आप अपना वक्त देते उसे, पढ़ते टेक्स्ट बुक्स रात को उसकी मदद के लिए? रोज अपने आप से ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है कि मैं कैसे किसी के लिए कुछ कर सकता हूँ। हाउ कैन आई गिव बैक टू अदर्स? चाहे आप टीचर हैं, डॉक्टर हैं, सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं, देयर विल ऑलवेज बी एन अपॉर्चुनिटी टू गिव बैक। आप किसी को वक्त देकर मदद कर सकते हैं, कई बार पैसा देकर, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली गिव योरसेल्फ योर हार्ट एंड सोल टू लिव स्मार्टली फॉर योर ओन सेल्फ एंड फॉर अदर्स टू।

0: ਪੰਜਾਬੀ ਚੁਟਕਲੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਚਟਪਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
1: ਸੁਣਦੇ ਯਾਰ ਰੋਜ਼ ਰੇਡੀਓ ਤੇ
2: ਸੁਣੋ ਸਾਡੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਕਲਚਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਤੇ।
3: दिल और प्यार का रिश्ता तो बहुत पुराना है। जिस इंसान ने आपके दिल में घर बना लिया, फिर उससे खूबसूरत आपको अपने आसपास और कौन नजर आएगा। जहां तू है वहां मंजर हसी होता है, बाहर आए तो तू है यकीन होता है। तेरे दामन की हवा लेकर महकता है चमन, तेरी नजर का असर जानशी होता है।

अपने मनपसंद साथी का साथ हो तो हर मुश्किल से मुश्किल रास्ता भी आसानी से कट जाता है। ये उदासियाँ, ये बेबसी जो तुम हो पास कुछ नहीं, दिल में मचल जाएं कहीं वो ख्वाहिशें जगा दो। अनजान राहें, अजनबी सफर, कब तक मैं रहूं तन्हा, कट जाएगा हर रास्ता जो तुम कदम से कदम मिला लो। फिजा महके खुशबू से चांद तारे उतर आए वहीं, मेरे दिल के अंधेरों में कहीं यूं महफिलें सजा दो। मेरी जुस्तजू हो मेरी आरजू, ना जुदा रहा करो मुझसे, मुझे इश्क है हाँ तुमसे, अब जरा सा मुस्कुरा दो।

दिल थी गिरे और गिर गिर कर संभलते रहे। हवाओं ने बहुत कोशिश की बुझाने की, मगर चिराग आंधियों में भी जलते रहे। तो जी, यही डिटर्मिनेशन, ये जिद ही है जो आपको जीत की तरफ ले जाती है। रास्तों पर तो सभी चलते हैं, लेकिन जो अपनी जिद से, लगन से नया रास्ता बना दे, ही इज द चैंपियन इन द ट्रू सेंस। वेल, हम भी इस सफर के आखिरी पड़ाव तक पहुंच गए हैं, बट बिफोर आई से गुड बाय टू ऑल ऑफ यू, लेट्स एंजॉय दिस नेक्स्ट नंबर टुगेदर।